संयम तीर्थ उनों युगों का धर्म है, कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नूं विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुन दान कर लवे, जल धारे कर लवे, गऊआं दा, घोड़ियां दा, हाथियां दा दान कर लवे, गुपत अशरफियां गुपत दान कर लवे, आख्या ए जितने भी कर्म कांड हन ए पिछलियां युगां दी बात है। तू आप दे बराबर सोना भी दान करे ना रोज, तावी तेरे नित नेम दे तुल नहीं। अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम करना, उदे तुल होर कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसका कितना कु फल है कोई रसना बयान नहीं कर सकती। पर असी क्यों बेखबर हां इस गल तो, क्योंकि सानू नजर नहीं आउंदा। असी कहंदे हां यही चार घंटे धंधिया विच लावांगे, चार पैसे नजर आउंगे, पर नजर नहीं आउंदा सानू कि इस आत्मा दे लई भी असी कुछ करना है, इनू भी कोई खुराक देनी है। नजर नहीं आउंदा सानू परमेश्वर ने की करन लई भेजिया ते असी की कर रहे हां, किधर जाना सी, किथे पहुंच गए हां। जो गुरमुख जन हन भाई, वह तो हर थां तो कोई ना कोई वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन, हर थां तो कोई चंगी वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन। भाई लहना जी संगतां नाल हन जा रही हां, मगर मालन वेच रही है पालक, आवाज दे रही है पलक सोए चुके, पलक सोए चुके। ते भाई लैणा जी खड़े हो गए। सेवादार कहंदे ने महाराज पालक वेच रही है, चलिए। कहन लगे नहीं, ये ज्ञान दे रही है, कोई समझा रही है सानू कि जेड़े अमृत वेले पलक मात्र भी सौ गए, वो अपने निशाने तू अपनी राह तू चुक गए, वो भूल गए रस्ता। इसलिए आज रुत बीजने दी यही एक रुत है जो मनुष्या जन्म विच असी जप सकते हां। सानू शुभ संदेश मिलता है इना

ना पूछो जाति। ये पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया है। जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने, कहते ने हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है। दोनों गल्लां दा ख्याल रखना। जोत पुछन करके निकटता आउंदी है, जात पुछन करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण ये बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया, जानो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पुछ, क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देती। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां, आप दी चोली पावां।

नामदेव भगती करने वास्ते मंदिर विच आ गए। धर्म दे ठेकेदारां ने चुक के बाहर मारे। पंडतां ने आखिया तू नीवी जात विच एक शुद्ध ते मंदिर विच किवें आके बह गए। कहिंदे ने मोढ़े ते कमली पाई मंदिर दे पिछवाड़े जाके बह गए। परमात्मा अगे रोस कीता, हे परमात्मा

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करियो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को आ की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नामदेव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हरिमंदर उदों भी बैठे सन नामदेव हरिमंदर अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परां हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शिया गुरु अर्जन साहब ने ते गुरु का दिता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बोवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह दी खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

गल राम दे नां दी है, पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला ले। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

काल खाए कि छत होंदे, काल खाए कि छत होंदे, नानक रा पछाणे से गुरसिखी दी ए निशानी। हां तिसू विचों आ रिया, हां तिसू विचों आ रिया, मान होंदे होई नी माणा। हां तिसू विचों आ रिया, हां तिसू विचों आ रिया, तान होंदे होई नी ताणा। हां तिसू विचों आ रिया, छड़ सियाणप होई आणा। हां तिसू

कीमत अदा नहीं हो सकती जिस वस्तु दी ओ मिल जावे ता उसनू प्राप्त कहिंदे हां। आख्या तू 84 लख जूना विचों त्रिगण जूना विचों दुख भोगदा होया अकाल पुरख दी रहम ते नदर होई तैनू मनुखा देही प्राप्त होई है ते एहो ही तेरी बारी है एही वक्त है तू इसनू जप जप के सेवा करके प्रभु दी प्राप्ति कर लवे जन्म मरण तो रहत हो जावे ते जे ना कीता तां फिर ए अवसर कदे मिलेगा नहीं तैनू इसलिए आप बख्शिश करदे हन।

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे कोलों डरदा नहीं, किदे भरोसे ते तू अपना जीवन बता।

सराय चा बड़ा वड़ा शायमयाना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लुआना है।

लक्ष्मी कुवारी उस परमेश्वर दे घर लक्ष्मी कुवारी है। ओदे हुक्म तो बगैर कोई लै नहीं सकदा, जे कोई लै भी लवेगा ते दुखी होवेगा।

बहुत है। उस गोपाल राय दे कार खेड कर दिए, कदी किसे नु मार दें दिए, कदी किसे नु मार दें दिए। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार खेड कर दिए।

बन लिया। ते बादशाह कह लगा देखो तेरा हर बीठल है नामदेव, दस मेनू तेरा बीठल, तेरा भगवान किथे।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़िया का समा दिता, पर सत घड़िया बीत गई। गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई, भगत जी आप बयान करते हैं।

खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेट किया, पर नामदेव जी ने उस सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तो रुपए बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने, दरबारियां ने अपनी कीमती सेजा नामदेव दे अगे धरी ते बेनती कीती, बादशाह सलामत दी ए इच्छा है, ए कीमती सेजा तुसा आप वर्तनी है, संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती सेजा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए, बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी सेजा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा दरबारियां दे नाल। फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सेजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगिया, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक वारी दिखा दियो ताकि मैनू तसली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पे।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान, ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती। अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

अमृत बाणी बोली मिठी हो जाती है। जे गुरु दयाल हो जाए पवन त्रैस हो जाए तिना लोगों की सोची हो जाती। गुरु दयाल हो जाए तो इंसान उची पदवी नूं

गुरु दयाल हो जाए, देहोरा फिरे देवरा कहंदे ने मंदिर तां ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नूं। जदों पंडतां ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता। तो भगत जी कहंदे ने

दयाल हो जाए तो छापर छाई वह सड़े हुए घर भी बना देंद क्योंकि नामदेव की छन सड़ गई सी ते परमेश्वर ने आप नामदेव की छन बनाई सी। भगत जी कहते ने जो दयाल हो जाए तो छापर छाई वह आप अपने प्यार के घर

बादशाह ने पूछा, भगत जी एक सेज ता मेरी है, ए बाकी सेजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदों कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदे, पेट करदे दसां नूं आंदे फिरत विचों, ता ओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलदे। ए सारियां सेजां तैनू मिलनियां सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजां हुण तैनू नहीं मिलनियां। ता बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे नहीं पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। ऐ बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिहड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर, ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं हुंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई है, खंड ब्रह्मांड बनाए ने,

उस परमेश्वर दे घर की है, भगत जी ने बयान किया है। जांचे कर निकट वर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला, एते जी जांचे हैं करी, सर्व व्यापक अंतर अरी, प्रणवे नाम देओ तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना ब्यांत है, ए जो मैं दसे है, ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है, ओ बनान वाला है, प्रणवे नाम देओ तांची आन। नामदेव आखद है, ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां, ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई, राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

आप कह सब ही के बिके बचपन में परमेश्वर नहीं। जमीन जमान के बिखे समस्त एक जोत है न काट है न बड है न काट बड होता है। जमीन जमान के बिखे समस्त एक जोत है न काट है न बड है न काट बड होता है। नहन है न बन है समान रूप

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न

पली राज पूले कहूं पवर हो के भली पात पूले कहूं फूल हो के भली राज पूले कहूं भवर हो के भली पात कहूं अश्व हो के बह बेग ऐसे कथो मैं न आऊ कथो तो है कैसे कहूं मैं आऊ कथो तो है कैसे कथो

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो बदला काथुरी को गाहक आयो लाद्यो काल बिरख जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी क्यों पुरज पहा मोहन ठगौरी।

प्रमुख बिरला जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है

मित्र हुंदा ही होए जेड़ा मनुख दा भला लोचे, जेड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा, भला फिर और दुश्मन दी की लोड़। जेड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तो बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कमां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेडां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वो मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उनका फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नूं, ऐस नहीं अगले जन्म नूं, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है, उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया है, जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे, सुने सुनावे, उहनूं असीं मित्र समझने हां। हालांकि साहिबां ने पावन

तब लग नेचर नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ के पाते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस कटे लख को उठकावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग भिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ मिलते सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे पढ़ापत होए। कर्ण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार। जैसी दिस करे तैसा होए, आपे आप आप पर सोए। जो किच कीनो सो अपने रंग, सबते दूर सबू कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए, नानक साध ही रह समाए। आप उपदेश है समझे आप, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कुछ उसका ओ करने हार। उसते पिन कहो किछ होए, थान थनंतर एक ऐसोए। अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग आपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिल चीना। पला पला पला तेरा रूप, अति सुंदर अपारे अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी।